0: उस्ताद बिस्मिल्ला खा आणि सहकारणी सनेर बाजूरी मंगलधून आत्ताचपण ऐकलीत. आम्ही आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्रावरून बोलत आहोत. सकाळचे 6 वाजतात. हिंदीतून समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा. अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है. इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है. देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा. दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी. इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे. ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है. श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें. श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं. श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है.
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे

0: सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल

0: व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटीडी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटीडी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे धाराशिव केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। श्रुतेहो मंगल प्रभात या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पण ऐकूयात सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेली मधुसूदन कालेलकर यांची ही भक्तिरचना। संगीतबद्ध केली आहे गजानन आणि द्वारकानाथ यांनी।

PIDPI यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन। सरकारी संस्थान, विभाग या मंत्रालय के किसी पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार की जानकारी हो यदि आपके पास, तो सारी डिटेल्स के साथ अपना शिकायत पत्र सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को बंद लिफाफे में भेजें। और हाँ, लिफाफे के ऊपर PIDPI लिखना ना भूलें। PIDPI के अंतर्गत की गई शिकायतों में विसल ब्लोअर की पहचान गुप्त रखी जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.cvc.gov.in। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली

0: और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी,

0: 3,981 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणीचं हे धाराशिव केंद्र आहे। सकाळचे 8:15 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम लख लख चंदेरी।

0: चिंचू, कोया, गदबा, जतपत, कोंडा दोरा, कोंडा काप, रेड्डी, खोंड, एनाडी आदी जमाती वास्तव्यास असल्याचं दिसून येतं. तर आसाम मध्ये गारो, खाकी, मिझो, मिकीर नाग आदी जमाती वास्तव्यास असल्याचं दिसून येतं. बिहार मध्ये असूर, बैगा, बंजारे, बिरहोर, गोंड, मालपहारिया, भूमिज, सवरिया, पहाडिया इत्यादी आदिवासी जमाती वास्तव्यास आहेत. तर महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सातपुडा परिसरातील सीमावर्ती भागात आपल्याला भील, पावरा, मावची, कोकणी, गोंड, वारली, कोळी, ठकार, दुबळा, बैगा, कोलाम, कोरकू, परधान आणि वाघरी या आदिवासी जमाती वास्तव्यास असल्याचं लक्षात येतं.
1: केरळ मध्ये प्रामुख्याने कदर, एरुल, मुथुवन, नक्कीकर, मलरन, उलत्तन, उरळी, विश्वन, कटुनैकन, पुलनय, मालसर, कुरुम आदी आदिवासी जमाती असल्याचे आढळून येते. तर मध्य प्रदेशामध्ये कोरल, भील, पावरा, बिलाला, बैगा, गोंड, परधान या आदिवासी जमातीची वस्तीस्थान असल्याचे दिसून येतात.
0: तामिळनाडू मध्ये तोड, कदर, इरुल, कोद, उदयन, अरंदन, हळबा आदी आदिवासी जमाती वास्तव्यास असल्याचं दिसून येतं. तर मैसूर मध्ये प्रामुख्याने गौदुलू, हिकवी पिकवी, इरुलिग, जेतू कुरुम, मैलीकुडी, भील, गोंड ह्या आदिवासी जमातींची वस्ती स्थान असल्याचं दिसून येतं.
1: ओडिसा मध्ये बैगा, बंजारे, बिरहोर, चेंचू, गदबा, गोंड, खडिया, कोल, खोंड, कोया, उरंग, संताळ, सौरा या आदिवासी जमाती आहेत. तर पंजाब मध्ये गड्डी, सोंगल, भोट या तीन आदिवासी जमाती वास्तव्यात असल्याचं दिसून येते. आणि राजस्थान मध्ये भील, गरासिया, कोरकू, कोळी, कातकरी, वारली, पारधी आणि सेहरिया आदी आदिवासी जमाती आहेत. तर पश्चिम बंगाल मध्ये हो, कोल, कुंडा, कुरव, भूमिज, संताळ, बैगा, बंजारे गोंड, कोरवा, लोहर इत्यादी आदिवासी जमाती असल्याचे दिसून येते. राजस्थान मधील आदिवासी जमातीविषयी बोलताना पूर्वनिदेशक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवी दिल्ली येथून शंकरलाल बोदात म्हणतात.
2: साथियों, मैं शंकरलाल बोदात, पूर्व निदेशक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली से बोल रहा हूँ. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ एवं जय जोहार. राजस्थान में मूलतः दो जनजातियाँ रहती हैं जिसमें भील एवं मीणा जनजातियां प्रमुख हैं. दोनों ही जनजातियों की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां घाघरा पहनती हैं, जिसमें मीणा जाति की महिलाएं पीली लुगड़ी ज्यादा पहनती हैं. आभूषणों में सोने चांदी के आभूषण जैसे कि नेकलेस, सोने की चूड़ियां, चांदी की चूड़ियां और चांदी के चूड़े, सोने के चूड़े और कमर में बांधने वाला कंदोरा और पैरों में बिछवे, ये सारे जेवर पहने जाते हैं. आदिवासी महिलाएं आदिवासी दिवस के दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनने के बाद गाती हुई, अपने अपने तरीके से गाती हुई, नाचती हुई समारोह स्थल पर पहुंचती हैं और वहां पे बड़े बड़े घूमर बना करके समारोह का आनंद लेती हैं. पुरुष भी चांदी के कपड़े हाथों में पहनते हैं, तीर धनुष हमेशा उनके हाथ में रहता है, तलवारें भी रहती हैं और हाथों में कभी कभी बंदूक भी रहती है. और ये जो हथियार हैं, ये जो शस्त्र हैं, ये एक सिंबॉलिक है, होते हैं और इनको हवा में लहराते हुए ये लोग सब नाचते हैं, इस त्यौहार का आनंद लेते हैं.

0: फिर से हम आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मोम सा है मेरा जानू।
0: पुष्पा 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

0: पुष्पा टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज थी। रकीब आलम ने इस गीत को लिखा था, देवी श्री प्रसाद का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज 9 अगस्त है। अगस्त का महीना दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागरण का महीना है। इसी महीने में स्वतंत्रता आंदोलन ने कई निर्णायक पड़ाव देखे। 9 अगस्त 1925 एनिवर्सरी ऑफ काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड की वर्षगांठ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो दिन जब कुछ निर्भीक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। लखनऊ के समीप काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन अपने कब्जे में कर लिया था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना, धन एकत्रित करना। इस अभियान में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक वीर क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें काकोरी की कहानी सिर्फ ट्रेन रोकने मात्र की कहानी नहीं, अपितु उस अदम्य साहस और वीरता की कहानी है जिसमें युवाओं ने अपने निजी सुख, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज काकोरी कांड की वर्षगांठ पर हम उन सभी अमर क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी विरासत और उनकी देशभक्ति भारत की अमूल्य धरोहर है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं।

इस गीत के पहले आपने सुना था जो गीत, उसे हमने फाइटर फिल्म से लिया था। विशाल दादलानी, शेखर राव जियानी की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था उषा उत्तुप, कविता कृष्ण

कृष्णमूर्ति ने, फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: एबीसीडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अनुष्का मनचंदानी और साथियों की आवाजें थी। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
8: वंदे मातरम।
7: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
9: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
7: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें यार रहमान जावेद अली मोहित चौहान की थी, इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सदैव प्रसन्न और समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं, सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

पावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वो बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाइप की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।
2: श्रोते हो, विविध भारती मुंबईचे कार्यक्रम सहक्षेपित केले आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्राने।

0: IR या मोबाईल ॲपवर श्रुती हो आपण ट्यून केले आकाशवाणीचं हे धाराशिव केंद्र. सकाळचे 10:30 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत प्रायोजित कार्यक्रम कायदा न्याय मंत्रालय न्याय विभाग या मालिकेचा भाग 6.
1: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Bharat mein ek bahut hi speed se demographic transition ho raha hai. Hamari jo jansankhya hai, usme jo hum elder population ki baat kare, तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी, वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी. और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा. तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीज़न कौन है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे. इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं. यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है. तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं. इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है. वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं. तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं. तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है. अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया. जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था. लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं. अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे. तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था. पेरेंट्स जो थे एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं. हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं. तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था. लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं. और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, ये वो कहता है, नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं. और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं. तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए. राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं. ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन्स एक्ट उसको

0: से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी हैं जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है, तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं, functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं, तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके, ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे, बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, जरूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो

0: में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें, स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा, वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी अवॉइड कर सकती हूँ। तो वीव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है जिसकी की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस टॉक वॉज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: श्रोत्यो, आताच अपन प्रायोजित कार्यक्रम ऐकलात, कायदा न्याय मंत्रालय।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। झुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ। तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छली, तो नींद नहीं आई।

कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे पिया की पुकार कि घर आजा संग साजन झूला झूली। अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुई मुई हुई गवा, झरने पानी से इठलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं, आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है, क्या क्या छुपा है सावन की बूंदों में, जरा दिल से पूछिए। दिल का राग, कभी दूरी कभी कोई पास पास, छोटे छोटे झरनों की अंगड़ाइयाँ, तालाब पोखरों नदियों में उमड़ता पानी, हरियाली हर तरफ, मवेशियों के लिए चारागाह, हल बैलों के घुंघरुओं की रुझन आवाजी जैसे घन बरसता हो, रात कभी कभी बिजलियों से सिहर जाती है, क्या रात क्या शामें क्या सुबह सब भीगे अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सावन क्या कुछ छूटा, इस सावन क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओं, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं। कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप ज़रूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा, तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है और हर पल अपनी पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदे मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

मलसिन्हा और शमी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओं। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी वो गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात की है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का की उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना लयबद्ध होना ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है

ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है, तो आप हमें जरूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

छलिया फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़।

जाता है। पिछले सावन में श्रोताओ, कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आप

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना।

0: एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा, जीवन की सृजन, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियाँ हैं बारिश की, उन पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।
1: ठीक 1:30 मराठीतून राष्ट्रीय बातमीपत्र प्रसारित होईल। तसंच 1:40 आपण जिल्हा वार्तापत्र जळगाव जिल्ह्याचं ऐकू शकणार आहात।

जिस गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैं सुन रहा हूँ दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओं। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इस जगहों की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलग है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी, ये धरती नीले आसमान को ओढ़े ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियाँ ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से, और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहाँ का नज़ारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं, और संगीतकार।

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एकमा जी श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और

दोस्तों नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीज़ों से भरें जो मायने रखती हैं।

दोस्तों, अगर हम नफरत की भावना से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी थोड़े से बदलाव लाने होंगे। क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफरत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे, तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का सम्मान करना सिखाएं।
1: नफरत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
1: हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि की। उपराष्ट्रपति ने डॉ BR आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी

0: सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: Uparashtrapati Radhakrishnan 2 divasiya Andaman aur Nicobar dweep samuh ki yatra par hain. इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
4: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह

0: स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगचाओ और पुडोंग हवाई अड्डो ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रवि ने इस गीत को सरबद्ध किया। सह लुधियानवी की रचना थी महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का गीत है आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गया। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जो...

आ रहे हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूं के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

सर्वद प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे, इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के गए इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमा ताई, सीमा ताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, सहल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है ये। बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपा ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: आप सब लोग कुछ छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जज की आवाज, मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनता किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
4: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
5: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
6: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
5: क्या मतलब?
6: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
5: ये बात और कोई भी जानता है?
6: नहीं।
5: पाठक भी नहीं?
6: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
3: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें

0: हिम्मत नहीं है।
1: और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं, पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं, पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं।
2: ओ, ये कौन हमारा इस समय कौन है?
3: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
2: क्या
3: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
2: ओ हाँ।
3: नमस्कार कामनी जी।
4: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
3: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
2: तुम जरा जल्दी आ गए।
3: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की काफी था। ठीक है तो मैं जाऊं।
4: सिगरेट पीजिए, जल्दी भी क्या है?
3: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
4: बैठिए बैठिए, क्यों जल्दी है?
2: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
3: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
2: हमारी निजी बातें थी।
3: निजी बात? ओ समझा, आप लोग शायद मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
2: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
4: क्या हुआ केशव जी?
3: जी
4: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
3: जी जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
2: क्या? तुम जानते हो?
3: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
4: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
3: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
4: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
3: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
4: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
3: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और
2: आत्मकथा लिख लाए हो?
3: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
2: ये क्या झमेला है?
3: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
2: क्या कहा?
3: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
2: तो तुम जानते हो?
4: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
3: नहीं।

0: शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ, सालों गुजर गए। 5-6 साल पहले हम बंबई की कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी, वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
1: हाँ हाँ पढ़िए ना।
2: नहीं, पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
0: शेखर खोसला? हाँ, शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था। हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
2: अच्छा?
0: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
2: उम्र क्या है?
1: सुंदर, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
2: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
0: और वो कहता था, अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
1: और क्या?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
2: क्या
0: के शेखर इन पर जान दे।
2: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
0: जी गोरा।
2: रंग गोरा है?
1: गोरा।
2: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
0: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
2: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
0: अरे अरे, लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
2: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
0: अच्छी बात है।
2: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
1: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
4: हाँ भाभी।
1: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
4: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
1: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगे बदला?
4: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
1: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
4: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।

0: वो अफ्रीका से लौट आया है।
1: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर घोसला।
0: हाय कैसा है?
1: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
0: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
1: क्या करूं भाभी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरे कुछ समझ में
0: अरे
1: नहीं आता।
0: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
1: भाभी आप समझती क्यों नहीं,
0: जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
2: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
0: भाभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
2: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर घोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
3: शेखर घोसला को आप जानते हैं? शेखर घोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर घोसला को आप जानते हैं?
4: हाँ जानता हूं, लेकिन अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
5: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे थे।
4: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
1: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
4: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
1: नहीं, उसका एक दोस्त है।
4: कैसे परेशान कर रहा है?
1: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
4: मतलब
1: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
4: और तुम ये सब ना मानो
1: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
4: उस आदमी का नाम क्या है?
1: शेखर घोसला।
4: शेखर घोसला?
1: हाँ हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
4: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
1: क्यों?

0: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
1: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
0: एक शब्द भी और कहा तो गला घोट दूंगा।
1: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
0: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
2: शेखर खोसला को आप जानते हैं, केशव ठाकर आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आवाज कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूत किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
1: केशव जी,
0: कहिए जी,
1: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
1: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
3: और क्या?
1: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
1: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी, रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था, और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
1: सुनिए कवि जी,
0: जी
1: कल शो है ना?
0: हाँ।
1: कल पाठक में सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी,
1: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
1: कवि जी।
0: जी जी,
1: आप आ गए।
0: मैं बिल्कुल आ गया।
1: ये पहली पंक्ति के तो
0: टिकट
1: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
1: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी।

0: सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
1: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को
0: अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखूं मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखूं आपके उस खूबसूरत चित्र को।
1: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
0: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
2: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। आज जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
3: शेखर खोसला
2: जेल की कोठरी।
3: हाँ पूरा सच।
2: बकली
3: सच के सिवा कुछ नहीं।
2: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
3: शेखर खोसला झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हो? जवाब तो हाँ या ना।
0: रात को गरमाई मिली है जिसे तुम गायर प्रेमी चट्टो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए। उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। शेखर मैं तुम्हें जानती हूं। मैं तुम्हें जानती हूं। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों शिखर? जवाब तो उससे बातें करो। मुझसे बातें करो शेखर, मुझसे बातें करो।
4: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया।
2: हाँ, बिल्कुल, ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे रादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी, लेकिन उसकी जो ये थी क्या कहते हैं अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही, हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है, और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह, तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो, वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किस्से सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि ये सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे, लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामिया मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी, और इतना मुझे वो अच्छा लगता था उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चौल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात, हाँ। वाह,
2: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है।

0: बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है, वो भी बताइए।
0: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
0: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि गुलजार साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा, सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे, देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए, अभी तक वो कुछ 58 चार्ज होता, तो क्या अब
1: एक बार की सलाह पे 58 यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
0: तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिए जाए।
0: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
1: शरारती भी
0: और दूसरे पे हावी होने वाला। और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया, कब करें। तो मैंने कहा कौन से रोल करना। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अफसाइड। तो नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बहुत सुंदर रोल्स।
1: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई,
0: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है। तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ। मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा से मासूम।
1: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें, जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
0: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने, वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है, इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली, माय एंटायर करियर, इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
1: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
0: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
1: ओ गॉड।
0: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा
1: प्रोसेस में
0: नहीं,
1: था
0: नहीं। जी। लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी न कभी कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया, फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा

0: छूटा छूटा तो वो समेटता गया मेरे
1: जी
0: अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
1: वाह, ये भी बात है। हाँ। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
0: जी।
1: और वो रस्सा कशी का खेल
0: हाँ,
1: हो रहा
0: हाँ,
1: था,
0: हाँ।
1: वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना। तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती हैं दिमाग में, वो पटकथा का हिस्सा बनती
0: बिल्कुल,
1: जाती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
1: हाँ।
0: इससे और क्या चाहिए। अब वो

0: मिलते हैं। हाँ,
1: हाँ
0: इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया,
1: जी
0: क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो, का बॉल है वो, बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
1: क्या
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह
0: वाह, ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े
1: हो
0: गए। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का,
0: जी
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी।
0: बिल्कुल।
1: मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ,
0: हाँ।
1: ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया,
0: हाँ।
1: और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं क्या मजे की बात है ना, बंबई की खास चौल पूना में,
1: पूना में।
0: दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड, फिल्मी एवरीथिंग इज फेक, तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
1: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम, तो कई चौल तो होती थी। वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना की कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़िया लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं बम्बई की चौल पूना में क्यों, तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पूना गए और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की, हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग्य चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बैल्कनीज थी, बैलुस्टेड, और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से, और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ, तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बन के हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना, ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा,
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
0: प्यारा लगा मुझे, अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी। कौन आ...

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं। आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग। ही वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर, पुणे में, दोनों अब नहीं रहे, लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलास राव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है, और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई
0: जी।
1: उनके गाँव में नायगांव गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा, सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और

0: वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता।
1: बाप रे,
0: और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहाँ, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते देखते यार सोमा क्या है वो, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर ली।
1: इंसान की जुझारूपन की मिसाल।
0: जुझारूपना की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है। वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ मतलब उसकी सौत। तो
1: बिल्कुल
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई,
1: जी,
0: फिर वो कुआ हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, पर बहुत धड़ल्ले वाली औरत, और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा, गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम, हाँ बंबई में रहकर।
1: जी
0: मेरे कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाला मतलब। कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहां वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेट्री, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा संकरा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल
1: जी
0: ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा। हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर,
1: जी
0: 40 40 मिल मजदूर एक कमरे में। हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई, देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है। कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मैं मेरा अपना
1: आम
0: डायलॉग
1: जीवन
0: नहीं
1: से
0: लिखता
1: आया
0: हूँ।
1: है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी, टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और

0: जा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपाणी और वहां से लौट रहे थे, और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तमाकू ऐसे
1: उड़ रहा है।
0: उड़ रहा है और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तमाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है।
1: जी
0: इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी चौथी पांचवी फिल्म थी,
1: जी
0: मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए। एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शबाना आजमी, ओम पुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम, हाँ
1: वो
0: वो
1: आपने खुद लिखा है,
0: जी
1: ये भी
0: जी
1: कमाल की बात है।
0: या मैंने खुद लिखा,
1: जी
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया।
1: जी
0: बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अम्बट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन,
1: जी
0: और जी एस भास्कर ने बम्बई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: दोनों ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते
0: जी
1: हैं,
0: सही बात है,
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी यहां मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे,
1: जी
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर।
1: वाओ
0: एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला,
1: जी
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून।
0: जुनून, एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना करना रपन, हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहते हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका आता है, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ देखो, तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को

0: लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे, और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी। तो बीआर में अगेन, बीआर में डबिंग चल रही थी, और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, स्क्रिप्ट ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बात मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है, तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया गया और सब हक्का बक्का, अंदर सात आठ लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद, तो
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे, आगे कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो वो निकल गया फिर हम चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था, और हाँ। वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए, अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली, काहे रे नाना, मैं भी उतनी मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: मतलब क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड, तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी,
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का, मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा गुजरा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, अद्भुत।
0: एंड नाना लॉफ्ट एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग उठ के तालियां बजा रहे, और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है, उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, हाँ, इसलिए आप बच गई,
0: हाँ,
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं। मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात है।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: क्या वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं

0: पानी लग गया, पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम, मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है, उसके पीछे बच्चे, और दौड़ दौड़ के वो कांटे कटोरे में, वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ। और फिर वो देखते हैं नीचे, और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो
1: माथे पे
0: अपना
1: लगाती
0: माथे
1: है।
0: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे। और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं, किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है कीचड़
1: जी
0: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो।
1: वाह
0: और फिर वो कुएं का ये होता है, तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है। तो वो
1: जी
0: छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
1: कितना सुंदर
0: है।
1: है, कितना सुंदर।
0: दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस फिल्म, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म,
1: जी
0: एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड, एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस। आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा।
1: जी, एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
0: हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा होता है कि नाना नाना भी अब पहुंच जा गया है। नाना मतलब वसंत, वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बम्बई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गांव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती, उसकी बीवी वो आती है, और एक शाम को फिर वो कमरा उसका, हाँ, और वो दिखाता है, जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर,
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी, और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, तो कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है, हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर। और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
1: जी
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी, बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू, और इसके साथ ट्रंक उसका छोटा, बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है, और वो कहते हैं कि 40 मंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं। तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, जिसे और कुछ तो चारा होगा। तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है, और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली, तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आए ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो
1: जी
0: कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहता है लेकिन जगह कहाँ है। तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह, फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था,
1: जी
0: क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, हाँ, तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, हाँ, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी, तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोनों लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है वो भी सोती

0: और जैसे दोनों सोते हैं, उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले।
1: अद्भुत
0: मतलब ये
1: अद्भुत,
0: या क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस
0: राजश्री सावंत थी।
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो
0: हाँ।
1: इसलिए मैं चाहता हूं कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपिया का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह,
0: हाँ, इसका ये पढ़ के,
1: चिपको आंदोलन की
0: चिपको
1: प्रथा।
0: आंदोलन का, मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें। हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें। एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो, जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन मिलियन गुना जी। देन द गर्ल विनी, माई डॉटर, हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु इज स्टडिंग समाजशास्त्र है,
1: समाज
0: लेकिन
1: मानवी की
0: हाँ, लेकिन आदिवासियों की,
1: जी।
0: शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी। देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, वो भील या डागर या महादेव कोळी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग है, थोड़ी सी उनके रिवाज अलग है, तो क्या करे फिर। बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए। इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म, यू कांट टेक लिबर्टीज विथ एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परी कथा है बड़ों के लिए,
1: जी
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल। यू ना भींड है, ना भील है, ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, दे आर
1: यस
0: ऑल वेरी बिलीविंग, हाँ, एंड दे आर ऑल वेरी स्केर्ड इनसिक्योर, एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लविंग। तो ये सब जो है, तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतर बन नाम दिया जंगल को, मंतर बन।
1: जी
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो, लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
1: बिल्कुल
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। फिर
1: गजब।
0: हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं, सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिंग, अरे चुप कर यार, ये सही भाषा थोड़ी है
1: गजब
0: ना।
1: गजब गजब
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं
1: जी
0: नहीं वो गलत बोला, गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब,
1: जी
0: हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली,
1: जी
0: बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में, लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन।
1: जी
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के।

0: वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने,
1: जी
0: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स
1: जी
0: अलॉट.
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात बोले.

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। हाँ, सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी है। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी, बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हरा।

0: बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स कि करो फिल्म वगैरह,
1: पपीहा बनाओ,
0: पपीहा बनाओ। और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर, सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या क्या? ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमक साल हो, मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड यस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, ही सेड आई वाज हिज नंबर वन सपोर्टर। तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट, सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह। फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक्षालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, एंड परमिशन एवरीवेयर। ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, यू नो। सो वी शॉट ऑल ओवर, फैंटास्टिक, एंड इट वाज, इट रियली वेंट आउट वेरी वेल।
1: क्या बात है,
0: इट्स सैड दैट द फिल्म डिडंट, पीपल हैव नॉट सीन इट सो मच।
1: जी जी जी, अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए।
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
1: जी।
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है। फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट। अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर सा।
1: जी, जी।
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे।
0: लवली,
1: क्या नाम होगा।
0: I'd love to hear what they feel. I truly would, sincerely. And thank you so much for your patience.
1: जी, सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी,
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी, और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था, और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
0: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है।
1: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है, आगे कभी बात करेंगे।
0: तो किए ना,
1: मुझे पता नहीं
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की, थोड़ी ज्यादा है इतने
0: अच्छा
1: सारे सवाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का, विविध

0: भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।
2: विविध भारती मुंबईचे कार्यक्रम आम्ही सहक्षेपित केले। आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्राचं प्रसारण FM बँडच्या 101.3 MHz। सोबतच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। सायंकाळचे 5 वाजले आहेत। ऐकूया हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतगुंजन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी

0: अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचे हे धाराशिव केंद्र आहे। सायंकाळचे 6:05 झाले आहेत। ऐकूया आमच्या आज आणि उद्या प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा। या रूपरेषेनंतर म्हणजेच 6:10 मैफिले गझल आपण ऐकणार आहात। सुगम संगीत 6:30

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत

0: निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित

0: चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए।

हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नाम फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
3: आइए अब सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: जरा।
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में साजन की सहेली फिल्म का गाना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत उषा खन्ना का।

आइए अब सुनते हैं जुनून फिल्म का गाना। अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाजों में गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में कामचोर फिल्म का गाना, गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है।

0: का।
1: सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बो।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
4: घर घर तिरंगा, रच घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।